श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थितिपुरन्दकारे धनुषसि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतव सर्वे गः शान्तिकरा भवन्तु।

की अपराशांस आवागमन को बसा मिलने निर्माण कार्य तीव्र बनाने जोड़ दिया हो। साथ ही सड़क विस्तार अंतर्गत बेलपा क्षेत्र का सर्वेस वैन तथा

का सदस्य हैं तथा सहायक मार्ग तत्काल संचालन लाइन आवश्यक निर्माण कार्य अघि बढ़ाने बताइएको छ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपति

0: मेरे को पैसे
1: क्या घड़ी तर भी आ गया
0: दौलत
2: कौन
0: पता नहीं तारपी की गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है।

0: ये रख लो पैसे, क्या घर या तरफ आ गया बावलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, तारुपी की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू साला मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल।

0: हेलो हेलो 1 2 3 चेक।
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ट्ज।
2: सुर में गाना सीखिए पाधनी सा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: तर भी आ गया दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।